वतन मुझो वतन मिसरी खां मिठेरो माखी खां मिठेरो मिसरी खां मिठेरो माखी खां मिठेरो कुर्बान तह वतन ता कया पहंजो तन बदन कुर्बान तह वतन ता कया पहंजो तन बदन ही मुझो वतन मुझो वतन।